यो चाड़ पर्व में यूरोपेन्स प्रस्तुत करद रंगीन घर बरसिं उपहार रु 50,000 को यूरोपेन्स को खरीद में पाने लकी ड्र कूपन अने इन्वर्टर एसी एक चौन डबल डोर फ्रिज इंडक्शन चूलो राइस कुकर वॉल क्लॉक बम्पर प्राइस में पाने एक जोड़ी को लगी बाली टूर यूरोपेन्स घर मात्र होना रंगाउनुहोस् सपना बनी।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 11 बजेको छ.
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक.

0: जनता केबल पांच दशक देखि
1: रेडियो भेरी एफएम रेडियो भेरी एफएम
2: रेडियो भेरी एफएम 98.6 वैक्सी 2.7 मेगाहर्ज
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम टेक अहिले ठीक 5 बजेको छ
4: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

0: जनता केवल पांच दशक देखी
1: सूचना
2: कर्णाली ट्रमा केयर वीरेन्द्र नगर आठ खजुरा सुर्खेत में प्रत्येक शनिवार